0: चाय करें
1: चाय चाय
0: चाय भी चाय
2: नाश्ता ग्राम नाश्ता ग्राम
3: चाय चाय चाय वाले चाय चाय चाय चाय वाले चाय ग्राम चाय चाय ग्राम चाय
0: ₹60 में खाली चार्ज बोलो भाई।
4: ये है टॉर्च से सिल्वर 60 रुपया बिना लाइट बिना बिजली का मोबाइल चार्ज बोलो।